0: कम्पनी का सामान वारेन्टी का साथ बनाइन का साथ ही विभिन्न ब्रांड का फ्रिज वाशिंग मेसिन एसी भैक्यूम क्लीनर इलेक्ट्रिक सामग्री को मरमत गर्नुका साथ ही सुपथ मूल्य में खरीद बिक्री पनि गरिन्छ। सेकेंड हैंड फ्रिज तथा वाशिंग मेसिन एक्सचेंज समेत गरिन्छ। किचन चिमनी टीवी इंडक्शन चूलो राइस कुकर मिक्सर पनि उपलब्ध छ।
1: स्याङ्जा सहित गुल्मी पाल्पा को रामपुर पर्वत जिल्ला का विभिन्न भाग में गए होम सर्विस दिदै आएको छ। यहाँ विभिन्न कंपनी का सामान को सर्विस गर्नुका साथ ही वारेन्टी भए वारेन्टी बाट र नभए सुपथ मूल्य में मरमत गरिन्छ।
0: पाठक इलेक्ट्रिक एंड रेफ्रिजरेटर वर्कशप फ्रिज मरमत केन्द्र वालिङ 8 नया बजार लाइन राधे राधे चोक बाट 3 घर तल प्रोप्राइटर कृष्ण पाठक संपर्क मोबाइल 9855954963 9855554 98024

0: सुनिए सुनिए अगले हम बजे
1: समय को साथ में जेतु सुनसादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिक रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़ पांच गरेता कुना को लाइन जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: रेडियो आदि खोला 105.4 आपने ख्याल रखने।

फ्रेश आदि खुला खबर को साथ में हिमाल सुनचांदी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक गहना ग्यारेन्टी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनचांदी पसल वालिंग बजार स्यांग्सा।

0: समय को साथ में जेतु सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिकै रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़िएको पांच घर यता कुना को लाइन जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
1: ठाउँ।